0: স্কুল তাকো গায়া ইনস্টিটিউট তাকো কিডনি বালিন রাখা তের কর্মশা মিকা মহুরি রিস্ক তাকা আলাম আয়তাং আদি দুলাহে আদতাং আশাগেন্ডমান আশাগন্নমান গুইত্তাকাং হেলুন তের কর্মুগে অ্যাওয়ারনেস সেশন তাকে কুরিয়া গেন্দেবন হামা মিয়ায়কো গ্রেটার মালে এরিয়া স্কুল হেলথ ওয়ার্কার সংহাসকো গেং কিডনি হেলথ ওয়ার্কশপ এবেস কুরিয়া গেন্দেবন স্কুল হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট না হাসকো ল্যাগেং কুরিয়া গেন্দেবন মি প্রোগ্রাম গা বড আড়ন মেঙ্গা মাসকো ఫోర్టీ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ క్యాంకే నారా బలితం అది క్రోనిక్ కిడ్నీ డిసీజెస్ ఎయి అనే స్కూల్ కుదింగే మీ దుళహొక మట్టక ఎకుదిన్న దిమా వేదాణే కిడ్నీకే బలితకొన్ రక్క తెరు కురుమట్టక ఎబే ఫుణు హేదన్ తెరు కురుమగే కుతుం కురియకిందె ఉన్న వర్క్షాపే
1: তে মিহারো মিমাকে কাবে হন সওই হাম মালে সরহদ গ কোরে তের ফর্মুলা সিটি গস মিহার কোরে মি দনি ফানসে বিহং আশাবি হা মি হাম কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রামে হাস কোরে গ কোরে গ দে
2: এ গে ইতুরুং আর গড ফাহা কলম বেনম পাবলিক ওপেন ডে এভস মি উইক তেরে গ হাম নিমি গেন গসি এ গে কিডনি সি খতা বে মালু মা তাহিলে সি হি চেকআপ তাকা তাউলি মি পোস্টা ডিসপ্লে তা হিমেনে গত হারকাই তক কুরিয়া গেন দেউনি দেন এ গে ইতুরুং ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল সি কন্টিনিউয়াস মেডিকেল এডুকেশন আদি এ গে ইতুরুং সি হি মুয়াজ্জাফুন না হাসকো গেন পোস্টা মেকিং মুবারাতে কম্পিটিশন নে কুরিয়া গেন দেউনো সি হি মুয়াজ্জাফুন পোস্টা মুবারাতে বেভি এভিডেন্স বেসড পেশেন্ট এডুকেশন কো সুরহি সুরহিয়া তাই রিজনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি গায় কুরিয়া গেন দেউনো
1: হোমি কাস দেন ডক্টর জাওমা ফা কোরবি গতম মি হামা মি ভালি মিহুন বেশ আমি আমি কথা কাঙ্কাম গাহারে খেয়ে তের উম এমন আলি বে হিং হামা জেহ মা দিম হুঙ্গি দোলে হকুমা আউমা এ ফুরসতে কব বেশ বে গেং এবাদে হামা ইয়া কিগা ফুরি হামা সিহাতে গে হুরমা বেশ কুলিবার মার পড়া এহি তের বেশ বে মি ফদা হার কে আতে হেমা মি ফদা হার কে আতে গসাব আল গল মেন দি সিহি দোলে হক ইতর বে গেন দিউ আল গল মেন গে উম্মিদ কি হেমা মি কাঙ্কাম গুলি কে মি হার কে আতে রে বি কামিয়াব কম বে গেন দিউ আল গল মেন বে নো বনি দেখো মি কা স্কিডনি গে বাদে তাকা মি বাইয়া পালা আল গল মেন গে রাজ্যে গে সমা মি কান তাহমল কুরবা ওয়ার গিনা ফার তেমরকিন আইলাত মিহাম আলগম মি মি কম্বডুমা কি ফাহা কোরা কামে হেম কিডনি কি বলতক ওয়াহক দক্কারুগা আমকো আলগম মিগ রাজ্যেগা ফেননি কোংকাল বাওত্তকি গোবাইতো কিডনি কি আমকো ফেননি কোং বাওত্তকি কি বলতকি
0: আমগতেক রাজ্যেগা মি ফেননা কিডনি কি বলতকি তেরেগ মি হেমেননি ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ হাকুর বালিগ সাউমম মে জহে কিডনি কি বালে মি গিনদোস্ত কে ওয়ান দে হাকুর বালি হরম গে সাউবং কোরি মতে ওয়া হালতে এ হামায়া কো লেম চদি উম গে সাউবং কিডনি আমে লিবে গেলুমা কিডনি গে দাই মি বালে মড মডং কিডনি গে মাসা কে হি নরু মুন্দিও আদে কুল্লিয়াক কিডনি আলি বে গেলুন ওয়াতে একিউট কিডনি ইনজুরি এ মি কে আ বালে হাশগন ফেম মদ উম গে সাউবং ওয়াতে বড় ইনফেকশন এ দিমা উম গে সাউবং নোতা থাদু খেন্ডু উম মে বেনু গোরা বাইকাল বেস তা বেনু গোরা উম গে সাউবং দিমা ওয়াক মে মি একিউট কিডনি ইনজুরি আ কি দেন আদি হামায়া কো কিডনি গা হিলাউ ফেদুমা কিডনি আ জে ইনফেকশন তাকা আইলি গোতুম বার্তাবা কিডনি গে বলত মিসাল কা পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ মি আমো কো রাজেগা আড়ন মেং তেরেগা ফেন্ন বলত কি না কিডনি গে বলত কি কুরি ব্যাগা দেন গনে বেজনা মা হাক মি হাকুর বাইয়া লেগে প্রেসার রঙ্গল কো রঙ্গল কন্ট্রোল কো গেং আদি গাওয়া দুন ডক্টর দাক্কা এক মা বেনুবা ট্রিটমেন্ট ফারওয়া হো দি জেনা মা বাল বড় বালি বড় ইয়া নুদি হি ফেহেটি দানে আদি রাক্কা তেরবে দানে বল তাক কম ফাহ কলম
1: একম কে সরকার তে রুম টাক আলু রাঙ্গল ফিওল তাক কে কো বাত রাখা তে রুম গতন দুরালা কুর বিদান কন তাক কে কো বাত নত তিমে ফ্রম ফদ কম তাম কুর ম দান মদে মিহার কুরং এম মে রাঙ্গল দিরুল মুগ এম মে রাঙ্গল ইফেক্ট ও রাঙ্গল আদ তাক কে কো বাত হাম মিকং কম বে গতন তিমে ফ্রম সওয়াল কুর ম আলগুন মিংগে হাম আম কো স্কুল বা নাম্বার তিনে তিনে হাতে সুমেং হাই কা গুলম কেন্দ মি হফতা কম মি বাহক দ কানি কিডনি বাত তাক বে গতন কে তো মি ফা করবানি মি আর মি কিডনি গে বলতে কবে গো তুম বাহক দক্কার বল মি হুন্না মি ফদ বল মি হুন্না আলালুমা মি এহি তরিকম ফোর কোদেরুগা কবে তো এগে মে রাঙ্গল গো তকি মি মিসাল কা মি হসপিটালাইজ করে ফন নুন গে তরে গবস ফরওয়া দে আলালুমা এহি তরিকম দেরুগা কাং তত করে মে রাঙ্গল গো তকম ফা করবানি
2: ಅಳುಗಡ್ಮೆನ್ ಅಣೆ ಪೇಷಂಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸದಂ ಆಮಕು ಗ್ಯಾಮ ಅಳುಗಡ್ಮೆನ್ನ ಬೊಡಂ ಮಿದಿಮಾವೆ ಪೇಷಂಟು ನ ವಾಹಕ ದೆಕೆ ಎಬೆ ಫುಳುಂಗೆ ಹಿಯಾಲ್ ತವ್ವೆಸ್ ಮೀಂಗೆ ನೀ ಕೀದೆ ಎಮ್ಎಂಎಸ್ ಎಮ್ಮೆನ್ನ ಕೀವೆಸ್ ವರಂ ಅಳಾಲು ಮಾ ಹುರಿಹಾಕಮ್ ಎಸ್ ಬೇನುಮ್ಮಾ ವೇ ಫುಳು ಎಹೆಂ ವೀಮ ಅಳುಗಡ್ಮೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಗ್ ಎಮ್ಎಸ್ ಎಬೆ ಫುಳುಂಗೆ ಹಾಲತ ಬಲಾಫ ಎಬೆ ಫುಳುನ ಗೈಡ್ ಕೊದ್ದೆಂದು ಕಿಹಿನೆಕ್ಕಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಣಿ ಕಿ ಹಫ್ತಾಯಕು ತಿಂದು ಅಹು ಮೆಹೆ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಪೇಷಂಟ ಗಾವಿಸ್ ದೆದು ಅಹು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆದಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಣ್ಣ ಹಿಸಾಬ ದುರುವಿಮ ಪೇಷಂಟುಗೆ ಹಾಲತು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಣ್ಣ ದೇಣೆ ಗಣವೆ ಎಹಿಮ ಪೇಷಂಟ್ ಕಮೆ ವಿಯಸ್ ಅದೇ ಬೇಫುಳು ಎಹಿ ತರಿ ಕಮಕ ಬೇಣು ವಿಯಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಅಬದು ವಯಸ್ ಗೈಡ್ ಕೊದ್ದೆ ಎ ಬೇಫುಳುನ ಕೀನಕ್ಕಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಣಿ ಕಿ ದೆನ್ ಅಬದು ವಯಸ್ ಎಹಿ ತರಿ ನವ್ಯಸ್ ಗೈಡ್ ಕೊದ್ದೆಂದು ಅಣೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ನೆ ಇತುರ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಂ ಬೇಣು ವಿಯಸ್ ವೆಸ್ ಕೀನಕ್ಕ ಎಕಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಣಿ
1: ದೆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಕೊದ್ದು ಫಣತು ದಿಗು ಮುದ್ದತ ಕಮ್ ಮಿಸಾಲ್ ಕಮ್ ಯಾರು ಕಿಡ್ನಿ ಬಲಿಜೆ ಹೊಮು ಕಿಡ್ನಿ ದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಕೊರ ದುರಾಲ ಮಿಗೆ ಫೇವರ್ ತಕ ಮದು ವಿಸ್ನುಮ ರಂಗಳು ವೇ ನಮ ಎಸ್ ವರ ಬೈ ಮೀ ಹೊಂ ಹಮ ವರ ಗಿನ ದುವಸ್ ಮಿಕಮ ಗೆ ಬತಾ ಮಲ್ ಕೊರಂಜೆ ಹೆ ಏಹೆಂ ಬಿಮ ಏಗೆ ಸೋಬುಂ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಹರ್ಷಿಕಂಡ ಮೇ ನನಿ ಕೊಂ ಕಹಲ ಬದಲ ತಕೆತ್ತು
0: ಆದೆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ದಾಯಮಿ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವತ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ತಹಮಲ್ ಕೊರಂಜೆ ಹೊಮೊಂಗ್ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ತಹೀನರ್ವ ಮುಂದ ವರಕ ಮುಳಿ ಹಸಿಗಂಡಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅಸರ ಬಕುರೆ ಎಗುತೊಂಗ್ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಮ್ಯಾಗಂಡು ವಜೀಫಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಿ ಮೀ ಹಸಿಗಂಡು ಮಿಹ ಮಾದ ತಬ್ಬೇರು ಕೊರು ಮಾ ಮೀ ಹಸಿಗಂಡುಗೆ ಮೀ ಜ ಮಾ ವಾಫೆಂಗ್ ಮೀ ಬೇರು ಕೊದ್ದಿನು ಮಾ ಬರೆಗ್ ಫೆಂಗ್ ಹಿಫೆ ಹೆಟ್ಟು ಮಾ ಮಿ ಕಾಲ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಎಹೆಂ ವಿಮ ಮೀ ಕಿಡ್ನಿ ಬಲಿ ತಹಂಬಲ್ ಕೂರ ಬೇ ಫುಳನ್ನ ಹಸಿಗಂಡುಗ ಬೇಕಾರ ವಿ ಹಮಾದಾತ ಕಾ ಫೆಂಜ ಮಾಮುಗೆ ಮಸಲೆ ಬಕೂರಿ ಮತಿವೆ ಅದೇ ಹಮ ಎಹೆಂ ಲೇಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತಿವು ಮಾ ಹಸಿಗಂಡು ದುಳವು ಮಾ ವಾರು ಬಲಿವು ಮಾ ಕಾ ಹೆಣ್ಣುವು ಮಾ ಮೇಣು ಬ್ಯಾಕುರು ಫದ ಅದೇ ನೆವಾಲಾಂಗುಂದಗು ವುಂ ಫದ ಅಲ ಮೆತ್ತಂಗೆ ಬಫೇನೆ ಅದೇ ಹಮ ಆಯ್ಕೋ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ದೌರು ವರ ಮುಹಿಮು ಲೇಗೆ ರೆಸ್ಸೆಲ್ ಉಫೆದ್ದು ಮುಗವೆಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಬಲಿಗೆ ಸಾವುಬೋಂಗ್ ಲೇಗೆ ರೆಸ್ಸೆಲ್ ಉಫೆದ್ದು ಮಾ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದುಳ ಹೇಗಂಗೆ ಫೆಹೆಟ್ಟು ಮ ಬೇಣುವ ಹೋಮೋನ್ ತಂಗ್ ಉಫೆದ್ದು ಮಧುಮಗೆ ಸಾವುಬೋನ್ ಲೇ ಮಧು ಮಾ ಕಷಿತ ಫೀವುಂ ಬಾಲಿ ಕಶಿಬುಂ ದಿಮಾವಕ್ಕಂತ ತಗ್ಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬಹಿಮೆನೆ ಅದೇ ಹಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಫಾಕೊಲ್ಲಂಜೆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ನಾಯಿಮಿ ಬಯಕಿ ಆಮಗ ವರ ಮಡು ಮಡು ಲಸ್ಲಹುಂ ಡಿವಲಪ್ ಮುಂಗಣ್ಣ ಬಯ್ಯ ಕಮವುಮುಂ ಬಲಿಗೆ ಕುರಿ ಕೊಳುಗ ಎವ್ವೆ ಸಲಾಮಾ ತೆಣ್ಣು ಫೆಣಿದಾಣೆ ಎಹೆನ್ ಎಹೆಂ ಕಮ ಕುರಿ ಬ್ಯಾಗ ಬಲಿ ದೇನೆಗಣೆ ಬಲಿ ಜಹೆಂ ಮೆದುವರಿವ ಅಸ್ಲು ಸಬಬ ಫರುವಾ ಕುರ್ಮಕಿ ಬಲಿ ಇತುರ ಗೋಸ್ವಿ ಅನ್ನು ದಿಹಿ ಹೆಟ್ಟು ಮಶಾ ಕಿಡ್ನಿ ಫೆಲ್ಮ್ ಸಲಾಮೆವು ಮಟ್ಟ ಕೇಳಿದಾಣೆ ವರ ಮುಹಿಮ ಫೇವಳಿ ಕಮಗ ಫಾಕೊಲ್ಲ
1: ಕಮಕ್ಕೆ ಸಳಗು ಮಿಂಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕುರಿಯಮಿದಾನೆ ದುಳಿಹೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಹಫ್ತಾಗೆ ದುಳಿಹೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಳ್ಗು ಮಿಂಗ್ ವಾಹಕದ ಕಮಲೋಕಿ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ತೊ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಬಲಿ ಹಳ್ಗು ಮಿಂಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮರಗಿನ ಫರತ್ತು ಬತ್ತ ಹಮ್ಮಲ್ ಕುರವಾದೆ ಮೀ ಹಮ ಬರಗಿನ ಬೈ ಫರತ್ತಕ ಹಮ ಒಂದಗೂ ಮೀ ಕಮಕ ವೆಗೆಂದೇಗೆ ತೊಳಮೆ ಹಮ ಫಾಕೊಲ್ವೆ ಬೈ ಆಯಿಲಾ ತಕೊಂ ಬೈ ಫರತ್ತಕೊಂ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಬಲಿತ ಹಮ್ಮಲ್ ಕುರಮಂತಾಯರುಗ ಏ ಹಮ ಫಸಿಹ ಕಮಕನ್ವೆ ಮೀ ಎಹಿ ತರಿಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಬಾ ಫರಾತಕ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೇ ಮುಖ ಸುವಾಲ್ ಕುರಮ ಮಿ ಫುರ್ಸ ತುಳು ಅದನ್ನ ತಿ ಫೋನ್ ಗುಳುವಂಗೆಂದು ಆ ನಂಬರ್ ಕಿ ತಿನಿ ತಿನಿ ಹತ್ತರೆ ಸೊಮೆಂಗ್ ಹೈ ಸೊಮೆಂಗ್ ಹೈ ಇದ್ರ ಬ್ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇರ್ಕೊಳಿತಾಳೆ ಬದ್ದಳ್ಕೊಲ್ಲ

0: शुक्रिया अनुसर। Presents Best Radio Presenter Competition के मैं उबारा हम गातों अड़वसों बल्लों के दबाहुरी आप रहते कर सदर खास शुक्र आदि अगर मैं गे मैं बैवरिंग ना अगर मैं गे हुन तेरिंग बेलुन तेरिंग ये भाट वा गया कमट का ऐसा मां मैं फुर्सत का वारा खास शुक्र है धन्यवाद अगर मैं गे ग्रैंड फिनाले का दम बदल कुरान फर्स्ट बैवरिंग मिति भी शाहमा हुसैन रशीद सानी शीन आदि नफा अगर मैं गे कम में एलिमिनेशन नाइट गादि यूलान कुरावर खास है बैवरनाने ए हफ्ता के हुशेल म बलाफ अगर मैं गे फंडी आरु नंग एम में कमुदा गो तं हुशेल बैवरिया यम मिदेनी अगर मैं प्रेजेंटर ऑफ द वीक आदि अगर मैं गे हुन तेरिंग बेलुन तेरिंग नंग एम में कमुदा गो तं हुशेल बैवरिया अगर मैं मिदू कोलनी फैन फेवरेट ट्रॉफी थोला हम गुआर खाल फोशी गए वेल्ला एवन वार मिकोल वेडन थी ठीक है खास वाहक होती तो थी देन कम में गोते सम कम में हफ्ता को खाल फोटा तो ला लावर खास गुलुन तक ओंड कम फाहा करेवे पुरे स्वा को ले मे दो के मे मालूम है सगुन में हुद ने थी सूर ने गे गोता खाल हेदु मुगा मी हको वदे के गेस तो ला ला इशारा तुम वाहक तक धक्का अपने को में दिए ती खाल फोशी गए इन इच आउन में बेनो गे आ दे ठीक है निम बांधे से
1: अस्तु मी फाउ ने गे हम इन इच गे एहिन्या नाफिजास कुडको कमिसवर का मालूमात कोले देने मेरे आस पुनी खालो फोट्टे गोन्ना ने एहिं एकनि
0: ओके हे मखालो फोशी गेना मिह का तोला लाविस गुलो मेंडे देत खालो फोशी अलगन में मि हुळु वालनी मि खालो फोशी गे
1: एम में पुरतमा प्रेजेंटर ऑफ द वीक
0: एते ती गोती
1: एगे बे मि गे बे
0: आ एम में पुरतमा प्रेजेंटर ऑफ द वीक मस्तेने खालो फोशी गो सीड फलार वालानी स्तोला
1: प्रेजेंटर ऑफ द किहा किहा वरकम मिहु नेवाई पाट्टा मि बुनम
0: हम दू खोल्ला में थी एबस रखा हम
1: मिजुवा पानी कर ने प्रेजेंटर ऑफ द वीक दिबे फरात की हुसैन रशीद
0: आदे Hussain Rashid, President of the Week, and Trophy Havalko Devani, Executive Director, Digital Media, Asset Management and Technical Resource, Ibrahim Rashid, Agun Meng, Mbengis Lobiva, Ibbe. Ibbe, Marabada Shukriya Adi Hama, Ibbe Ki Hama, Agun Meng, Mbengis Kabul Kurago Tuga Vara Huma Ya Eki Ga, Vara Gina Bayar Program Ta Present Ko Deva Befule, Hama Ya Eki Ga, Radio Ke Program Ta Deke Vara Loba Befule Bismi. अगुन में के बैवरी मिहार दो में फक्का वो में नहीं हम मिफ़दा प्रोग्राम तंग हुशेल म इब्बे के बाहे हम यागी नो इसमें बैवरी नवारा मुहिम वन की के तो विदाल वाणी बैवरी ना खास गोते का
2: अरुण फसन ने एम फहम अरुण आये रहे की का कुरे अरुण तजरबा के वाह कहेंगे तो लास्ट शिप किया प्रोग्राम में गेट रे वारा मजा को बदान आइडल बदान वर्ल्ड कप किया मुसीचित बदान दिंग यह कर रे इंटरव्यू का बैंक फेरोनी अरुण आये रहे की एम में एक ही का वारा सौगर के अंदर अरुण हितेरी एम बार रेडियो के बार हाथ आ गए थे, खुरी हाँ एम में आरु लाये थे एमएस बदम मिथी भी, अध्याम क्या दे हाँ मीन मीन मी कौन कुछ जंगी देखो माँ मी मेरी कुछ के सालों ने पढ़े विदान फुरतम होट्टे फेन खुरी था ना मी मी हूँ गादे दा मी वाह किस क्या दें जहे नून दोए मी इंटरकर कुछ जा ये मूड कोलीवर लाइफ जैकेटिंग लाइफ फॉरी मैं इस वक्त मैं अगर ना वाह दक्का बेफला होने भी लाइफ जैकेट में है तैयार होने भी दें अगर इधर हाथ साउंड करके मैं कि रेडियो प्रोग्राम्स के इस तरह दें अगर ना कि रेडियो देख दोबारा मैं कबाड़ दी भी खास को बिहार में प्रोग्राम की मैं मुबारक की एहुं तेरे ने बेदुं तेरे ने वारा मकबूल प्रोग्राम अरुण हम यागीन करूँ आदि वाह के धन्यवाद ना अरुण तेरे वाकी भी किंतु भाई बैवरी ने धन्यवाद में वाह के दिवराज जग आबादी फसल के हाँ आबादी के तेरे का रेडियो प्रोग्राम आडवास सब ये फ्रॉम गिनावान एक उम रेडियो का शाओगुरी कन रेडियो कमेक कुलन रेडियो में प्रेजेंट पल्ला हिवा खुदी बेफ्रॉम उलुवान एहन में एक तेरे फसल का आबादी के तेरे मुबारा तो का रेडियो थामरीन लिपिके मिहासा बंग आदे वंग यही कुड़ा कम इन्नो यही हम सर्टिफिकेट इन्नो यही हम थाट्टिंग एलिपुनी ओस्कायंग एलिपुनी आबादी के तेरे रेडियो तजुर्बा कुलम की यही हित कोण दान अरगों डकन तजुर्बा को में दान नवनी रेडियो है कि कितने में कोण मस्त कोरियस मूली उम्र के हंदा होना रेडियो का दुरकरनों दे में ते को दिन त्यों दिवार फखर वेरी कामयाब वरंग आगुहोरी हदिया दिवरा जगारनों ते को दिन आते दिवनी ये दो कोण दान थैंक यू
0: शुक्रिया इबे मारा उफा बेचेंगे तो खोबा हुसैना सेलियोट देने नो नगम भी इबे अको सेलियोट नगम
3: ಮಿ ದಾಯಿರಾ ಶೌಗರಿವ ಗಿನ ಬಯಕು ಉಫೆದಿಗೆ ಅಣ್ಣ ದಿಮಾವಾಣೆ ಎಸ್ ಸಬಬ್ ದಿವಸ ಎಫ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಅದಿ ಹೇಗೆ ತುರು ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ಆಡ ಹಾಸಕೋ ಬಿ ಆರ್ ಪಿ ಟೀಮ ವರಬಡ ಶುಕ್ರ ದನ್ನವ ದೈ ಅಳಗೊಂಡ್ಗೆ ಕೋಚು ವರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯ ತಿ ದೇವಿ ಇರುಷಾದ ತಿ ಕಿಯಾದ ವ್ಯಚಿಸ ವಾಂಬಿಕೆ ಹಿನಕ್ಕ ನುವಾಂಬಿಕೆ ಹಿನಕ್ಕ ಮುಸ್ಕಿಯಾದ ವರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯ ದೈಂಗ್ ಜಾಜು ಅಳಗೊಂಡು ಹನ್ನಾಮಣಿ ಅಳಗೊಂಡು ಫುರ್ತಮ ಹುಷಾಯಳಿ ಹುಷಾಯಳು ಎದೋ ನುಜತ್ ಸಮಯಂ ಕುರವಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏಯ್ ಅಳಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಬಣ ಹಿವ್ವರ್ ಎ ಹಿವ್ವರು ಹಿವ್ವರ್ ಲಿಬಿಗೆಂಗ್